0: क्लास तुमको फाफी
1: बमंगाता काम को मिन्ना बुमंगा केल संजयं बाई चेरों फुकतान नंबुमा इंस फावटन संजयने बुमा इंस अनोटन समास निनिन नमीच एट्राम सोफा अंड्रासों अंड्रासलाव टेनिस फिजरा ना ताने ते प्यांस चते वामनी रोपुल ते उयों ना तमले ले फोरुन निस फंड्राइस ना ना रना ड्राया ते उटन फिट फिटिन ले प्रेस ना इस मुझांस ते ना प्रेस ना वोटन ने कार्टे मोबाइल ते फिर पेरां फुट से ले सुरात ना ते ते से सेम बस सुरात प्रेस ना ते सान ना तो ने ने वे अंदो सुरात ना रा वोटन ये वेतन मेनो तुझी सम ना तो न फुंड का ये सिस्टी लो इस